0: तू सच्चा आप न्याओ सच ता डरिया खेप। न्याओ मीन्स जस्टिस।
1: How would you protect your friend from someone that is mean?
0: Accept God's will, like
1: by Bhikkhari Ji.
0: He was as happy as a bird in the spring on his son's wedding day. While planning for his last stay on earth at the same time. During his son's wedding festivities, Bhai Bhikkhari Ji was mending an old mat. He knew that his son would die soon. In due time, while others cried, Bhai Bhikkhari Ji remained calm, laid out the mended mat for mourners to sit, and then urged them to accept Vaheguru's hukam. Jio pind sab tiska jyotis pavai so hoy. Jyotis pavai means accepting whatever Vaheguru wants.
1: What would you do if your best friend moves far, far away?
0: Be multi-talented. Like?
1: By Mani Singh Ji.
0: He was a devout Sikh. An expert scholar. A top-notch leader. And a warrior as courageous as a lion.
1: Did you know?
0: He achieved martyrdom by having his body cut piece by piece. Sarabkala soi parbeen, naam mantar jaako gurdeen. Parbeen means multi-talented.
1: Can you name three activities in which you shine?
0: Whatever you do, wherever you go, you'll be a Singh and the world will know. Show them how bold, yet humble a Singh can be. For you are the son of
1: Guru Gobind Singh Ji.
2: Aho vaho Gobind Singh, aape gur chela.
0: Here you can see a map of Punjab and the birthplace of many exemplary Gursikhs. On this page is a glossary of some of the words and names used in this book. About the book, may the goodness of men from our unforgettable history inspire you to uncover not only your inner strength, but also kindness and humility, so you too can become a model Gursikh. The idea for this book is derived from Vashti Harrison's bestseller, Dream Big, Little One. This book contains excerpts from Gurbani, so please treat with the utmost respect. A special thanks to our little boys, Anhad and Darvish, who continue to inspire us. As they held the book Dream Big Little Gaur in their hands, they immediately asked,
3: Where is the Dream Big Little Singh book?
4: Ek var, ek parivarik aadmi, jo ki Sikh si, satvein guru, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,
5: हे सच्चे पातशाह, मैं कई सालां तो सब कुछ छड के तुहाडी सेवा विच आउण लई तरस रहा हां। मैं तुहाडी सेवा करके परलोक विच मुक्ति प्राप्त करना चाहुंदा हां। मेरा एक पुत्तर सी जो एक होनहार नौजवान बन गया सी। मैनू उम्मीद सी कि वह अपनी माँ ते अपने भरा भैन की देखभाल लई घर दे फर्ज निभाएगा, पर वह अकाल चलाना कर गया। मेरिया उम्मीदा टुट गईयां, मैं गुआच गया हाँ अते मैनू पता नहीं कि की करना है। मैं हमेशा परेशान रहना हाँ, मैं की कर सकता हाँ।
4: फिर गुरु जी ने उन्हें पूछा कि उसके परिवार च किन्ने मैंबर हैं, वह रोजी रोटी कमाने लई की करता है।
5: हे सच्चे पातशाह, मेरे दो छोटे पुत्र ते एक धी है अते मेरी पत्नी उन्हां दी मां। मैं परिवार का पंजवां मैंबर हाँ। जिथों तक पैसे की गल है, मैं जो भी कमांदा हाँ वह साढ़े सारियां दा ढिड भरन विच खर्च हो जाता है।
4: फिर गुरु जी ने उसनू उपदेश दिता कि जे सचमुच गुरु की सेवा करन दी इच्छा है तो तुरंत शुरू करो, अपनी किरत करो तो उन्हां दी संभाल वाहिगुरु ते छड़ दिओ, जो सारियां लई प्रदान करता है वह उन्हां दी देखभाल करेगा अते उही परमात्मा तुहाडी भी देखभाल करेगा। तुसी हुण अपनी जिंदगी नूं सफल बना सकदे हो।
5: हे सच्चे पातशाह, हो सकदा कि मेरे विचार बिचकाने होण, पर मैनू लगदा कि मेरे बिना वह बच नहीं सकणगे। तुसी गुरु हो, सब कुछ तुहाडे हुकम विच है, कृपा करके मैनू कुछ दिखाओ तां जो मैनू विश्वास हो सके।
4: गुरु जी जानते सन कि विश्वास का सबूत देने की लोड़ नहीं है। इस दे बजाए उन्होंने हदायत दिती, मैं तुहानू उस अकाल पुरख बारे सिखावांगा, पर पहला मेरे लिए एक काम करो, ये चिट्ठी मेरे एक सिख नूं पहुंचा दिओ, पर तुहाडे वापस आने तो पहला यकीनी बनाओ कि उसने पूरी चिट्ठी पढ़ ली है।
5: कृपा करके मैनू चिट्ठी दिओ, मैं उस तरह ही करांगा जिवें तुसी हुकम दिता है।
4: इसलिए यह जाने बिना कि चिट्ठी विच की सी, उसने वह चिट्ठी उस सिख नूं दित्ती जिस बारे उसनूं हदायत की गई सी।
5: गुरु महाराज ने मैनू तुहानूं यह संदेश देने लई भेजा है। गुरु जी मैनू एक पाठ सिखाउणगे, पर पहला मैं यह वेखना है कि तुसी यह चिट्ठी पढ़ी है। कृपा करके हुण इस नूं पूरी तरह पढ़ो तां जो मैं गुरु कोल वापस जा सकां।
6: गुरु तो यह संदेश प्राप्त करके मैं बहुत माण महसूस करता हाँ। जिहड़ा आदमी तुहाडे कोल यह चिट्ठी लियाया है उसनूं पढ़ लो, उसनूं 6 महीने ना जाण दिओ, इस तो बाद उसनूं रिहा कर दिता जावे। उस नाल इज्जत नाल पेश आओ अते उस दी चंगी तरह देखभाल करो।
4: इसलिए उस सिख ने जाके उसनूं बंद कर दिता तां जो ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
6: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
5: ਉਹ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ।
6: ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
5: ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6: ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। महाराज का कहना मनना साढ़े दोहां दे हित विच है। हुण सबर रखो ते 6 महीने आराम करो, अपना चित गुरां दे चरणां विच लाओ।
5: बेशक मैं गुरु जी का सिमरन करांगा।
4: इस दौरान कुदरत आप ही ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ।

0: मैं जंग दे समय जीवंदी सी।
1: जिंद कौर हुण अपने सामने अपनी नवी सहेली दी जिंदगी इस तरह देख सकती है जिवें कि वो टीवी ते आ रही होवे।
0: जदों मैं 16 साल दी सी उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छड्डिया सी ते दुश्मनां दी फौज ने निश्चा कर लिया सी कि वो सानू सिखां नू इस धरती तों मिटा देणगे अते गुरु साहिब जी नू भी मार देणगे।
2: खत्म कर दिओ इन्हां नू।
0: गुरु जी उन्हां दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी अते कुछ दर्जन खालसे नेड़े दे एक शहर विच जा पहुंचे। वो सब एक किले विच सन जिसका नाम सी चमकौर। अते शाही फौजां जिन्हां विच लखां दी गिणती विच सिपाही सन उन्होंने किले नू चारे पासों घेरा पाया होया सी। ए सब अग दे समुंदर विच शांति दे टापू वांग जापदा सी।
3: सत श्री अकाल।
0: पंजां दे समूह विच खालसा अपने गुरु अगे शहीद होण दी दात दी बेनती करता है।
4: गुरु साहिब जी अगली सेवा साड़ी लगाओ जी।
5: सानू शहीदी दी दात बख्शो जी तां जो असी इस जीवन दे असल मंतव धर्म दी जंग खातर लड़ सकीए ते फतेह प्राप्त कर सकीए।
0: फिर गुरु साहिब ने कहा तुहाडे उपर बेअंत किरपा है, एक खिण लई भी डरियो ना ते तुसी सीधा गुरु नानक दी चोली विच जा वसोगे। ध्यान रखियो कदे भी पिठ नहीं दिखाउणी। जिवें मीह दा पानी तेजी नाल किसे ताल च डिगदा है तिवें खालसा बेखौफ मैदान विच उतरिया ते अकाल पुरख विच समा गया। उन्हां दीआं आत्मा स्वर्गां विच इदां चलिया गईआं जिवें एक चिड़ी आकाश विच। मेरा हिरदा इह खूबसूरती देख गलबा गया। मैं यही अरदास करती रही कि मैं भी उन्हां वांग ही हो जावां। मेरी सिर्फ एक इच्छा सी उन्हां नाल किले विच होना। मैं अकाल पुरख नाल वादा किया सी कि मैं भी इन्हां वांग निरपै होवांगी। हे मेरे पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं केवल एक पासे बैठ के ये सब नहीं देख सकती। कृपा करो मैनू भी अपने पुता वांग शहीदी की दात बख्शो जी। मैं अपने अंदर एक कोमल जिही आवाज सुनी। मैनू तुहाडे उत्ते माण है मेरी प्यारी धीए, तैयार रहो तुसी मैनू छेती ही मिलोगे। मैं जानदी सी वो आवाज़ किसती सी। मैनू इउं महसूस होया जिवें मैं पूरी दुनिया की राणी होवां। गुरु पिता जी ते कुछ सिख जो रह गए सन दूजी थां कूच कर गए। दुश्मन उन्हां नू कदे भी फड़ ना सके। अंत विच बेअंत खालसे जंग दे मैदान विच लड़दे हुए शहीदी मंडला विच पहुंच गए। मैनू उदों ही पता लगा कि मैं हुण की कर सकती सी। मैं उन्हां शहीदां दी देह नू सत्कार सहित अगन भेट सकती सी। कोर हनेरा सी ते बहुत ठंड भी सी, पर तां वी मैं लक्कड़ कट्ठी करके लियांदी। इह बहुत औखा काम सी मगर गुरबाणी ने मैनू ताकत बख्शी। एक एक करके मैं अपने भरावां दी देह चुक के लकड़ां उत्ते रखती गई।
6: वाह, ओ ता बहुत भारी होणगे, तुसी किन्ने ताकतवर हो। पर मैं कुछ पूछना चाहुंदी हां। जेकर तुसी चिखां नूं अग लाओ ते पांबण नहीं मच जाएगा, की ये देख के दुश्मन वापस आके तुहानूं फाल नहीं लेगा?
0: हां जी, मैं जानती सी कि वह दोबारा मैनू मारन लई वापस जरूर आउणगे, पर मैं निरभय रहण दा वादा कीता सी अते ओ वादा निभाउण दे लई मैं यही कर सकती सी कि अपने भरावां दी सेवा करके उन्हां नू ओही मान दे सकां जिहो जिहे बहादुर जोधे ओ सन। दरअसल जिंद कौर जी, असीं अपने दिल दे अंदर सब जानदे हाँ कि सही की है, भावें ओह दुनिया नू नहीं दिसदा। साडी आत्मा ओनू पहचानदी है। एक डरपोक दी जिंदगी दा कोई मुल नहीं है, पर जीवन इत्थों तक कि मौत भी जो कि हिम्मत नाल प्राप्त हुई होवे बहुमुल्ली है।
6: एक केवल जीवन जीन दी गल नहीं, पर उस जीवन विच तुसी किन्नी हिम्मत ल्यांदे हो यही मंतव है।
0: बिल्कुल सत। मैं ए नहीं फिक्र कीती कि मैं जिउंदी हाँ जां मर गई। मैं जानदी सी कि मैं सही हाँ। मैं चिखां नू जलाया अते सत्कार सहित पाणी दा पाठ कीता।
7: जप जी साहिब एक ओंकार।

0: निर्वैर काल मूरत अजुनी
1: मुगलों नूं भावें ये ना दिसदा होवे कि किन्नियां सोहणियां रूहां आज़ाद हो रही सन, उन्हां नूं ये जरूर दिसिया होवेगा कि अग किन्नी भख रही है।
2: ओह तेरी, तैनूं ओह धुआं दिख रहा है?
3: हाँ, ते ओह चमकौर दी तरफ तो आ रहा है।
2: जेड़ा कोई सिखां नूं मान देण दी हिम्मत करेगा साढ़े हथों मारिया जाए।
3: वापस मुड़ो, असी वापस जावांगे ते ए जो भी है ओनू मार मुकावांगे।

0: बस एक औरत है। हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदों समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओ केड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिल्कुल ठीक है।